0: क्लास तुम कफाफी
1: नेवा सेय चाम सोना फुमारे चमुलाना सोनसान तिनेन नंप्रिस्ता अफाती मिनिस्टर सेय अचुनिस मुचारकार सेय तुंगा नेम लापंतानान सेय नाम फारेर वे राचुम प्रिस्ता नरो मगति चमाजो न्यूनारे तिनेन निस चिसरारा इने नै जाने नेवा सेरा फाम्यास फुल किमाना छुरवरी म्युतो नंदाला नेनो इजियान म्याचुनिया तिते आइजा सान फंदै छने नै चम सेरी चली छुरु रियोने मामिल लफाते मनारगा नान ह्यान नवानना सो चिसुने
2: स्तु चिफतो न फामेजा चिनचुमु जो मज मफा चावता तिनै अंबारियो जाने सोफेर सि रिसोफेर ताउल जेरो मिस फादे मनजाना कन चराइरा याफकु तिन सावता बाति ताकि नै जानते बाति रेवना मुम्बा नै Aiza,

0: गिलास तुम कुफा भी
1: निफितुंडाना फिरने इंसाने मिला फियुमानन मिला आदि मिला फिर जान अरसाइम मतुंगने अंतुको ममुना फुलन तनुरा मापिफन अंतनुरा इतुंडा फिरने ना रपिच रावकपिच आओ के नरो ची फोफी तक आओ के